जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिक जीवे त्रिक जी बास, जिन हर जन सतगुर संगत पाई।

प्रथम संसार एका रूपा नूपसरूपा रंक पयो राव खई भूपा अंडज जे रज से तज कीनी ओत पुज खान बाहर रत दीनी कहु फूल राजा हो बैठा कहु सिमट पय शंकर कैठा गिरी श्रेष्ठ दिखाई अचम पव आदि जुगाद स्वरूप सुजियम पव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संघरो दुर्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस्तुज तब सरणी परे तिनके दुर्ट दुख तुह मरे पुरख जमन पाग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्याए है ताके काल निकट न है रक्षा हुई ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरंत काला कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो ताकि ताप तनक मह हर हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुढ़ छा छिप सकै न कोई एक बार जिंत मैं संभारा काल फास्ते ताहु बारा जिन नर नाम तिहारो कहा दर्द दुट दुख ते रहा खड़क केत मैं शरण तिहारी आप हाथ दलिहो बारी सर्व ठोर महो सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को छह करता श्री अस्तुज जप है दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछत फल पावै सोई दुख नत सब व्यापत कोई अड़िल

प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार प्रिया शब्द गा बढ़िया गया

जन जीव है प्रभु नाम तेरे सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आई न जावे मेरा फल अविनाशी तुम निर्वाण दास

अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है, चाचरी छंद अपंग है, अनंग है, अपेख है, अलेख है, अपर

अबंध है अभक्त है विरक्त है अनास है प्रकाश है निश्चिंत है सुनिंत है अलिख है अदिख है अलिख है अपिख है अटाह है अगाह है असंभ है अगम है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है जाद है चरपट छंद प्रसाद सर्वघंता सर्वंगंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता शावल शांत त्व प्रसाद नमो नरकनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्र न पुत्रा न सत्र न मित्र न तातन मातन जातन पाताय नृसाकं श्रीका मितो मी कैसदाय प्रभय अजय अजाहय भगवती छंद त प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजिर हजूर है मेसुर सलाम है समसल कलाम है के साहब दिमागे के उसने त्यागे के कामल करीम है के राज करीम है के रोजी देहांद है के राज करहिंद है करीमल कमाल है कुछ जमाल है गरीमल कराज है गरी बिलनवाज है आई पल सकान है हरासल पिकान है कलंक प्रणास है समस्तल निवास है अगंजल ग्रीम है रजाय करहीम है समस्तल जुबाह के साहिब करा है के नरक प्रणास है बहतल निवास है के सर्वल गवान है मे सर रिवान है तम अमृत जी मह समस्तल अजीज है परम परमीस है समस्तल अदीस है अदीसल लेख है मे सल भेख है जिमिन जमा है अमिकुल माह है करिमल कमाल है के जोरत जमाल है के अतलंग प्रकाश है के मितव सुभाष है के अजब स्वरूप है के मितव विभूत है के मितव पसाह के आत्म प्रभा के अतलंग अनंग है के मितव भंग है मद भार छंद त्व प्रसाद मौन मन प्रणाम गुण गण मदाम अरबर गंज हर नर पर भांजे आन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर खंड भर नर अमंड हर पहुनास मुन मन प्रकाश गौन गण प्रणाम जालथन मदाम अनछे जंग असन भंग उपमा पारु गात मितदार जल थर मंड जिस विस भंड जल थल महंत जिस विस बेंत अनपहुनास त्रिज धरत दास आजन बाह कसदाह ओंकार आदि कथनी अनाद खल खल ख्याल गुर बर अकाल घर कर प्रणाम चित चरनाम अनछिज गात अजुज नम बात

है, खल खंडन है, महमंडन है, जगतेश्वर है, परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व उबारण है, त्रेत के तारण है, जग के कारण है, मन माने हैं, जग जान है, सर्व पर है, सर्वंकर है, सर्व पास है, सर्वनाश है, करना कर है, विश्व पर है, सर्वेश्वर है, जगतेश्वर है, ब्रह्मंडस है, खलखंडस है, पार्वती पर है, करना कर है, अजपा जप है, थपा थप है, कृता कृता है, अमृता अमृत है, अमृता अमृत है, करना कृता है, कृता कृता तरणी त्रेत है, अमतेश्वर है, परमेश्वर है, अकृता कृता अमृता अमृत है, अजबा कृता अमृता अमृत है, नर नायक है, खल कायक है, विश्व पर है, करुणालय है, नृप नायक है, सृपायक है, पापंजन है, अर्गंजन है, रूपतापन है, जप जापन है, अकलंकृत है, सर्वाकृता है, कर्ता कर है, हर्ता हर है, परमात्मा है, सर्व आत्म है, आत्म वासन है, जस के जस है, भुजंग प्रयात छंदे, नमो सूर्य सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो बृंद बृंदे, नमो बीज बीजे, नमो राज सिंह ताम सिंह सात रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे, नमो योग योगी, नमो ज्ञान ज्ञानी, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने, नमो ज्योति ज्योति, नमो ज्ञान ज्ञानी, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने, नमो कलह कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे नादन विभूते, कलंकर रूपे, अलंकर अलंके, नमो आशासी, नमो बांक बंके, अभंगी स्वरूपे, अरंगी नामे, त्रिभंगी त्रिकाली, अरंगी कामे, एक अक्षरी छंद, अजय अलह अभय अभय अपू अजू अनास कस अगंज पंज लख पख अकाल दयाल अलेख भेख अनाम अकाम गाह ढा नाथ परमाथ अजोनी मोनी, न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्म अपरम अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंदे, नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे, निरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी स्वधर्मंग विभूते, सदा सचदानंद स्तंग प्रणासी करिमुल्क नंदा समस्त निवासी, अजायब भूते गजायब गनीमे हरियं करियं करिमुर रहीमे, चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भुगते सजियम पहु शुभं सर्वदा सर्वयुक्ते, दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदायंग संगे अपंगंग विभूते,

सकल प्रजा जने आप सवारी सेवकन को सब गुण सुख दियो स्त्रन को फल मोहबत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछान तो चीटी ते कुंचर असूला सा पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक ही पीर पछान कट कट के पट पट की जान जबद कर करा कर तारा प्रजा तर तब देह पारा जब या कर तो कब हूं तुम मैं मिल देह तर सब हूं।

एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत 1700 जाय अर्ध सहस पुण तीन कही जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रवारं तीरस्त द्रव ग्रंथ सुधा रंग सवैया पाए कह जब ते तुम रे तब ते को अंक त्रे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री अस्पान कृपा तुम्हारी कर मैं न कर।

0: कुदरत पाताल आकाशे कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद पुराण कते बा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान बिमान
1: कुदरत पौन पानी बसंतर

संभाले सबना जिन करता है करना किया चिंता भी करनी ता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस ज्वारी स्वास्थ्य तिस तिस दिमाग भग

कर उच्च पगवाना बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कह सेवक जन माना

नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिनी नाम ते आया गए मसकत खा। नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

रामकली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सह सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार

सफल जन्म तन आज को दिन सरान पहर मूर्त करी औ पल पाए है सफल श्रृंगार चार सजा संजोग भोग आंगन मंदिर अत सुंदर सोहाए है जगमग ज्योत शोभा कीर्त प्रताप शब आनंद साज सुख सागर बधाए है अर्थ धर्म काम मोख लय काम नाम प्रेम रस रस